0: हंगार
1: अंगार दो मेंदर कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मेंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार हमें कनी दिवे ही राज्य क्या डूं

0: Sí, lo que pasa es que jamás Armena le fue en M a Gujor Estarica en M a por unión me debe para que debe ir na le fue mami ni mato que ver no jamás Jorge aco de mes ege en me rango lo que jefe en ser na jamás aco Jorge aco de mes andan con ser cama que debe baja que jamás Armen en me que amma te que vara por amana te ama anna we jil taka hame ege me fur hem gotu kara kater kama for ko den che che debe pa ki hem we ma mika horya ko denna skure verne te ko denna ki debe ba hon rangala wahaka dakka ku chek kamu ga wege hem we ma umed kura mikan ege me fur hem gotu ka da kura horya ko den mes maseke kuran kamange mifaharu ke baveri aki baraka assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: baraka
1: Labba.
0: Kenen halu?
1: Rangalo.
0: Ke kolani me adame?
1: Me adame oba mba. Ni waka daka. Me adame me program ga waka daka.
0: Program ga bare lang hama me TV tayaro landa.
1: Labba.
0: Baraka. Masikata tayaro.
1: Labba.
0: Embe ma baki mihar mihore akurta ka ki nono. Ba laviani thing akuru me
1: ba
0: ba ba im baraka hinga balala ba gay masekke
2: bas malang
0: baraka minage ba ba im meleboni bas malang bas malam ke goleng mifaharu mine gono lafzaki bap eh mahama vara baya golifa me ati ha uri ha itse hinga bappa me lafsu beran ko gen jumlaing hadala basmala mumba bappa me lafsu beran ko gen jumlaing hadal de
1: bappa me dwara bodu singa mahe beni
0: bappa me dwara bodu mahe beni ओके एम वे मा सेकर रंगळंगे एकम जुमला हदार कुडा कमे दत फहा कोला देणंगे बडो मे बेणं कोरणी हम वरा बडो एचे अ कं अंग देंद एम वे मा एक के फहत सिंगा कोम हे नलियस रंगळो आणंगे वरा बडो मे बणे महा बायंगे ता बडो एचे गेतुरं हम वरा बडं एति बडो कंद baraka
1: labba
0: em ve ma jumla hadar misal ka ti jumla pappa me adu vara bodu mahe beni buni ma inge ni ge ti hema vara bodu singa adenu dias rangalo ani ge baraka
1: labba
0: okay jumla rangalo inge jumla itura furi hama kollam datta me kial deni inge em ve ma furtam masekke vara kamyab demme ati fahu masekke वाहक्यो वाहक्यो तैयार मा दुर्नों हिसाबे को एक कुड़ा कुड़ा रीति आवश्यकता ओलों उमरों अंगार के जान की वरं हालने ऐना में सिंग्यो कुछ जान के गए के फुरगा होगा वर रीति बगीचा इंगोए ऐना के काफ़ बुनागो तुम ऐ हाबाई करने मागस फड़ा बगीचा इनो ऐ बगीचा का तफात मेवा के वत्तर तंग हुरे ऐगे तेरेगा आफला अन्नारा कुन्नारा जंबुरोल गस्वेस हो रहे जान कोम में दोहा को इस एबागे चाहे दे जान की गस कहा वारा लोबी को राकुज जान काफ़े आय को कोम में दोहा को इस गस तक फेंदे देंगे ना वाणी
1: एक तो जान दाना गोसाउट बाला देरो को लड़कों ने मेवा तके
0: एक तो को जान दांडक गोसा बालालेर
1: गाहु का मेवा तकेन्ने
0: दांडक गोस बालालेरो गाहु का मेवा तकेन्ने एम्मे रंगार एम्मे मा वारा फुरे हमाया देमसे क्या स्मेनी माली गुरुता गोसा बारका इसमें होती इंगे निमाम को रे बत्ता हादिया है अड़ोहंती बको देन्ना में आतो
1: लब्बा
0: कौन हादिया में होती
1: बंदी
0: पंजे क्या

0: तीन है ये तीन टोटल, बता इसमें से किसको पहचानता तू, बता हा? इसको पहचानता है?
1: मोटी चंडी साबित।

0: ފަހުގެ ފިލްމަކީ އޭނާގެ ކޮޕް ޔުނިވަރސަލް އަޖޭ ހިމަނައިގެން ގެނެސްދެ ސިންގަމް ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ބައިކަމަށްވާ ދެހަ ސައުވިހުގެ ސިންގަމް އެގެއިން ބޮލިވުޑގެ އެންމެ ކާމިޔާބް ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރޯހިތ ގޯލުމާލުގެ ފިލްމުތައް ގެނެސްދެމުން އަންނަނީ ދެހާސް ހަވަނަހަރުން ފެށިގެން އަދި މީގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމަކީ ދެހަ ސަތާރު ވަނަހަރުގެ ގޯލުމާލް އެގެއިން
1: रक्तघाट के इतिहास का वो काला सच जहां सिंहासन की लालच में सदियां बीत गईं और इस सिंहासन में चुरस रहा अतीत आज भी जिंदा है।
2: I want to be rich.
3: बेटा दिक्कत डूबी थी वो चेक कर रहा हूँ।
4: तो दर्शन।
5: अबे तू?
6: बेटा सुबह का भूला शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं।
2: बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से एक बड़े आइडिया से बड़ा
7: तुम्हारी ये बाबा सर्विसेज यूज करना चाहते
8: रात होते ही महल को लूटेंगे फिर किसक कल्टी मिलते
9: अपने आप हिल रही थी
10: अपने आप
9: हाँ।
10: अरे हवा से स्विंग हो रही होगी ना स्टूपिड
11: महसूस कर सकता हूँ कि वो बाहर आ चुकी
12: लक्ष्मण बोल
13: ये काम एक ही कर सकता है
14: वो कोई चार मंत्र रखा हुआ मायावी फकीर नहीं है
15: मैं आत्माओं से सिर्फ बात नहीं करता आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती
16: जदो सुरमा अखां च तुसी पाओ मुंडे तेनु तक दे जी
17: दूध को भूल जाओ
16: जदो मोरनी सी लहरो हवा च मुंडे कहंदे हौले हौले
18: पीछे

0: वारा तफा तो बंजे मैं फहरू मैं गणेश तिली मैं बांधेगा मैं गणेश तिली कौन मिस रशिक के बाहुरु है हिंगा कौन रशिक के बाहुरु है तो मैं फहरू सुल्ताना कह रहे हालं दो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: सुल्ताना
1: लवा
0: को बा कौन रशिक के बंजे मैं अड़े वुनी हिंगे ता
1: लवा
0: कौन रशे
1: नाहुसी
0: देमे दाते में गेनेस्तेने नु बंजेदो हादिया एक गोता ए बांदी मे गेनेस्तेने राज्य के कोमिस रशे के बाहुरु आए कोंगे ए कोन रशे के बाहुरु एक कंगे हे सुल्ताना
1: लम्बा
0: इंगे ते कोन रशे के बाहुरु एक का देमे मे फादा दिन हादिया ए आए फॉर्मूला बाहुरु फॉर्मूला नेंगे कौन से के दे में ती बोनी कौन से राशि के नाम बोने दो
1: हुआ दो
0: अकेले समावारा रेत बाहुरो आएंगे एकमा को मैं बंदी में क्या निश्चित ने फॉर्मूला बाहुरो है ये बंदी का ख्याल दिनी है बस फॉर्मूला को के बाय तंतानों के वाह का दो
1: लवा
0: कबा सेबोई किंतु तिवड़ने में दो
1: लवा
0: कौन से के रोट्टा रोट्टा रिहा करा दो हम वारा रंगला सैबोला हम वारत मसिक्कता तैयार वेला अंदो
1: मेनी
0: हिंगा मसिक्कता दामा गुरु तंगे फुरतम मेदानी शावियानी फेशिकिंग अलिफा बाकी है बहुर हो रिहा करे कौन करे नागानी शावियानी नोनो राब अलिफो ओके हम हिंगा अलिफ के मसिक्के बाला लंदो Alif Kamiyoti
2: Fikoi
0: Fikoi Fikoi ga me vagot ki dat kyal dena list enge
1: Lappa
0: list kyal denema egen sultana fahaga kollam vi bimmatin fennani kon echissetto tayar
1: Lappa
0: bimmati ga ule echi bimmati ga hore dana echi egotanga एमवीमा लिस्ट का मैं आदमी हो रहा है चिस्सकी मातिंदा बोर्ड वैली दोने हिनी विला गस वीना इतनों कोंगे चिस्से बिम्मतिं फ्रेंडली वैली वीना हिनी गस दे निमोनीता
1: Adi
0: F. Faharu. Matinda Botu, Veli, Doni, Hini, Vila, Gus, Vina.
1: Veli,
0: Vina. Our Sultana key list to Gamehere, Veli, Hini, Gus, Vina. Me hatarati Sultana Boni left.
1: Hini, Doni, Gus.
0: Nimoni?
1: Lapa.
0: I am a furta maseke varakami abinga. देव में होती देवाना मस्त के वाह क्यों आह क्यों तैयार था
1: लवा
0: माँ दोनों हिसाबे का कुड़ा कुड़ा रीति आवश्यक का उन्होंन अंग आहारों के जान की वारं हालानी ऐहन नम्बर सिंह हो कुछ जान के गे के फुरगो का वारे रीति बगीचा एंगोए ऐना के काफ बुनागो तुम ऐ हमारे कनी मागस तक फड़ा बगीचा एंनो ए बगीचा का तेरे का तफात वत्तरु के मेवा तब सूरे देखी ने वाण
1: एक चीज़ संगलाई अनालाई जंबुल
0: उसे कुछ एक तेरे का आफला अन्नारा कुन्नारा जंबुरोल
1: उसे सूरे
0: जंबुरोल गस्वे सूरे ओके हमें माने मालूम करेंगे अबे तारों हम तेरे को दिन देने हादिया है
1: लवा
0: कौन हादिया में होती
1: हाँ नहीं लवा
0: लवा इंगो थी
1: लवा
0: हम वाला तैयार हो क्या घोड़े का मदद में बाला नहीं क्या आवा फाशा
1: अन्नानी आप सस्पुलागे कारे अन्नानी ओ सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही ಹೌದು ಒದಗು ಸಾಧೆ ಅನ್ನನಿ ಅನ್ನನಿ ಅನ್ನನೇ ಅನ್ನನಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕಾಲಮ ಕೊಕ್ಕಿ ಪಾಕ
0: ನಿಮಣಿ
1: ಲವ್ವ
0: ವರ ಜೋಶುಗ ಹೊರೆ ಮೇ ಕಿಯಾಲ್ ದೇಣಿ ಮಿಲಾವ ವರ ಫೋರಿಗದ ಹೆಮೇಮ ದೇಮಸೆಕ್ಕೆವಸ್ ಫುರಿ ಹಮ ಕೊಲ್ಲಾನ್ ಗುರುತ ಸುಲ್ತಾನಸ್ ಗೊಸ್ಸ ಎಬ್ಬಂಗೆ ಎಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಿಂದ ಅಡು ಹಲಂಗೇನಚ್ಚೆ ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಸುಲ್ತಾನಸ್ ಬ್ಯಾರ್ವೆಲಿ ಮಂಗೆ ವಕ್ಯವೆಲ ಸುಲ್ತಾನ ವಕ್ಯವೆಲ ಫಣಿಕಸ್ ತಿಗುದಿನ ವರ ರೀತಿ ಹದಿಯ ಗೆನಸ್ತಿ ಫಿತುರ್ ಕುಚಕಾಕ ಬದ್ಲು ಕೊಲ್ಲಾನ್.

0: रीति हद गण इस्तीफा मिफार बदल को ले रुमे होती शौरा गुड़ा लेफा। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: शौरा किने हाल?
1: हाल रंगा
0: के कलणी में तुम्हें कमेंट नुकुरंग हम प्रोग्राम तैयार हो लागे मिति में मेको दे मिति पेनी हम को मैं कुछ का गुड़ा ला रस्तो। शौरा मासिक का तैयार दा कोंगा करे नगाने मिहारो बाकी अकोरता मेरे शावियानी फेशिगेंगोस लावियान्या
1: शावियानी
0: हिंगा शावियानी को मासिक के बदलो शावियानी का मियो मासिक कतकी बस शावियानी का मियो ती बस मालंगे हमा देम में बारे कुछ जावेस लिबुन मसे क्या मियोती ऐ हमारे बस मालूम के गोड़े नत्ता अनकस करदास कोले मेनागरने मिफारो मेले बुनो लफ्सा की फें ऐ हमें मफें मिलाफ्सु बैन को के अनकस जुमले इंगा दाल देंगे
1: फेनकी वारम माय एच्चे
0: आदि जुमला ऐ हाँ हमें जे है ना इंगते का हिरनो हिंगा पा
1: फेनकी
0: वारं अगुहुरी एच्चे जुमला रंगालोंगे एकम दते बुनल दीबा कीवे कं फें यहा अगुहुरी एच्चे का मिवानी
1: इंसानों ना वारं मुहिम एच्चे
0: तो दुआ कोमे कुछ जबस दुआ लेके मच्छा कितत ताशी फेंबोंगे बजे है
1: अत्ताशी
0: फेम्बो एगें कोमे कुछ का समरंगाला मासे के कोरे वैनी कोमे दोहा कुछ तो
1: लब्बा
0: ओके तेम्मी होती वाहक्यो तैयार ता
1: लब्बा
0: वाहक्यो गे फेशों मिहार गोस्सों हिसाब क्या देनेंगे
1: लब्बा
0: मा दुरुनों हिसाब गे कुड़ा कुड़ा रीति आवश्यकता उलों उमरों अंग आहारों के जानने की वरंग हालनी ऐहन्ना में सिंहियों कुछ जान के गे के फुरगो गावारा रीति बगीचाए गोए एना के काफ बुनागो तुम ऐ हमाय कनी मागस फड़ा बगीचाए नो ए बगीचा के तेरे का तफात मेवा के वत्तर तंग हो रे ए के तेरे का आफला अन्नारा कुन्नारा जंबरोल गस्वेस हो रे जान को में दोहा कोस ए बगीचा या दे देखिए ना वाणी माँ दोनों हिसाब के कुड़ा कुड़ा रही थे आवश्यक गाओलों उम्रों आँगा हरों के जान की वारं हालानी ऐहन्ना में सिंह हो कुछ जान के गे के फुरगा हो गवारे रही थे बगीचा इंगोवे ऐना के काफ़ बुना गोतुं ऐ हमें कड़ मागस वड़ा बगीचा इन्नो ए बगीचा का तफा तो मेवा के वत्तर तंग हो रे ए के तेरे का आफला अन्नारा कुन्नारा जंबरोल गस्वस हो रे जान को में दुआ कुस ए बगीचा है ते
1: जान की
0: गसका वाला लोबी कुरा कुचे ओके एमवी मा देमसे के वस कामयाब को लगे शाउरा इसमें ती गुरुवता गुस्सेंगे
1: लब्बा
0: ओके निमाम कुरिंगे बत्ता हदिया है ते
1: लब्बा
0: कौन हदिया में तुम्हें ती
1: Lembate.
0: Kya alaba?
1: Gaskaham mitiri kure rekkula gele koka. Was emiru ma malum foni boye ele koka. Le kole hene lala sinnani ele koka. Eleve ira hita adeye ele koka.
0: Nimoni?
1: Labba.
0: Le koka mi shaura avar riti vattare koka letta.
1: Labba.
0: ओके अहम वे मा लेको कालंग हास को बात में किया देने दो एम गुरुता गोसेंगे शौरा में ते मेद के प्रोग्राम उंगना में ले बेतो बालालंग अडवालंग इनचे
1: लब्बा
0: बाकी वेला नंगे
1: लब्बा
0: शौरा बाकी वेला फणिकावस हम वर रीति हदिया ती को दिनक में गनस्ते

0: तीन है ये, तीन टोटल। बता इसमें से किसको पहचानता है, बता हा? इसको पहचानता है?
1: दूसरे
0: मोटी चल।